विनष्टेयाता न एङता शोवाने आ याय आ याय हा ए मंग मंग कतरित अमम नामे पोषे ननोगा ओया मंग मंग कतरित अमम नामे पोषे ननोगा ओया शेक्या।

तक को पावा के पचे चेता आम छे वे पिछोते प्रमयं यकय हे क्यों नम्या ताला वहा ये ये हे ये या हे या हे या हे या को ने नम नवत क्या ओ वे ओ वा के कौन मो के क्वेश्चन